0: कौन।
1: लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ पहुंची है। कह दो कि ये किताब अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों। ये उससे कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। कहो कि भला देखो तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिस्क नाजिल फरमाया तो तुमने उसमें से बास को हराम ठहराया और बास को हलाल। उनसे पूछो, क्या अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया है या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो? और जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो कयामत के दिन की निस्बत क्या ख्याल रखते हैं? बेशक अल्लाह लोगों पर मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते।
0: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ

0: देखो ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि अल्लाह से छुप जाएं। सुन रखो, जिस वक्त ये अपने कपड़ों में लिपट रहे होते हैं तब भी वो इनकी छुपी और खुली बातों को जानता है। वो तो दिलों की बातों तक से आगाह है और जमीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे है। वो उसके रहने की जगह को भी जानता है और जहां सौंपा जाता है उसे भी। ये सब कुछ किताब रोशन में लिखा हुआ है और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद यह है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। और ऐ नबी, अगर तुम कहो कि तुम लोग मरने के बाद जिंदा करके उठाए जाओगे तो काफिर कह देंगे कि ये तो खुला जादू हुआ।
1: अल्लाह, ऐ हमारे रब, ऐ कौनो मकान के मालिक, हम तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, हम पर करम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने तेरे नाम और तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के लिए बर्रे सगीर में सरजमीन के लिए बाबाए कौम कायद आजम की क्यादत में बेहिसाब कुर्बानियां दी हैं। हमारी सरजमीन पाक को कयामत तक आबाद रखना। ऐ अल्लाह, हमें नफरतों की आग से बचा ले, हमें बाहमी मोहब्बत और खुलूस की दौलत अता फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा। हम अपने गुनाहों से तौबा मांगते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, पूरा मुल्क खास तौर पर ये मासूम बच्चे तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। ऐ अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल इस सरजमीन पाक को आने वाली नस्लों के लिए महफूज और मुबारक कर दे। ऐ अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह, दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख। हमारा ये परचम, हमारा ये प्यारा परचम इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सरबलंद रखियो। ऐ अल्लाह, अपने रहम और करम से और अपने फजल से इस सरजमीन पाक को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के हर शहरी का दिल तासुब, गिरोहबंदी और फिरका परस्ती के घिनौने ख्यालात से पाक हो और वो हर फिरके और हर तबके के भाइयों के साथ मोहब्बत व आश्ती और अमन सुकून के साथ रहे। ऐ अल्लाह, हम सबको हलाल की रोजी हासिल करने की तौफीक अता।
0: आमीन।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836।
5: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के सदर मसूद पज़िशकियान सुप्रीम लीडर के खसूसी नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई स्पीकर बाकिर कालीबाफ ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराइकती घरू वजीर इस्कंदर मोमनी से मुलाकातूं खिते में छिकताण के रोकण आबना हुरमुज खोलण तकरार पुरामन नमूने खात्मे से गाल आई एस पी आर मौज मुलाकात दौरान इलाकई अमुन तकरार गाल वसीले हल कर तरीकार से पिण गाल ईरानी क्यादत गाल तकरार के पुरामन हल लाय सहूलतकारी करण से पाकिस्तान के किरदार की साराह कई आई एस पी आर मौज फील्ड मार्शल जो ईरान जो दौरो मुकमिल थी वो है दौरे जो मकसद अमेरिका ईरान विच में तकरार के खात्मे लायद गाल में पयल रंडक के खत्म करण समेत खिते में चटाधार अमुन अदम इस्तेहकाम के मुस्तकिल खात्मे लाय पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को हिस्सो हो अमेरिका ईरान से मुआशी पाबंदियों मुड़ी छो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू करण जो ऐलान ईरान के सवन डिजिटल असासन टेक्नोलॉजी हवाबाजी शिपिंग के शोबन से पाबंदियों लगाई हुई अमेरिकी नाड़े वाले वजीर स्कॉट बेसन जो है तो ईरानी मुशत की हर वार रग कटनी है जहां उन रिजीम के सहारो दे रही है कम मुल्क ईरान के सहारो देने की कोशिश कई तो उनके डॉलर सिस्टम में बाहर निकलो पवन या आलमी अकेलाइप जो शिकार थो जे मुल्क अमेरिका से गड बीठल हूं उवारी जो फायद हासिल कंदा हाँ ईरान ला हर मालियाती लाइफ लाइन के मुस्तकिल तौर बंद वो उन्होंने इक्तसादी पाबंदियों का ईरानी निज़ाम पानी घोड़ा खोड़े छड़ी अमेरिका के मुआशी हमले जो ऐलान फौजी मुआज से नाकामी जो इतराफ है ईरानी आर्मी चीफ है तो अमेरिका के जंगी मैदान में कामयाबी मिले हा तो मुआशी मैदान में शोर न करे हा जंग में तेरान कामयाब थो आबना हुरमुज से ईरान जो मुकमिल कंट्रोल है ईरान चाहे तो अमेरिका तेल जो एक कतरो भी आबना हुरमुज में न तो गुजारे सके विचोबर में बहरान की पाड़ फलस्तीन जो मसलो है फलस्तीन ने इसराइल विच में गाल बहाली आजाद फलस्तीन रियासत जो क्याम जरूरी है चीनी सदर शे चैंपंग उर्दून के बादशाह शाह अब्दुल्ला से मुलाकात दौरान गाल बोल दौरान निजार चीनी परदे वजीर वांगी है तो विचोबर के सूरताल नाजुक मरहले में दाखिल थी वही है अमुन के बहाले लाय गाल तरफ वापसी अंटर है चीनी परदे वजीर कोयती परदे वजीर की मुलाकात दौरान सहकार वधाने ते इतफाक वजीर आजम पाकिस्तान ओलो वैल्यू चीन पॉलिसी जारी करे छी तकरीब के खिताब कंदे शहबाज शरीफ से तो मुल्क में जरिए इंकलाब लाए हारियों की भरपूर मदद कई वी 60,000 एकड़न ते जैतून जो फसल पोखियो पे वे जैतून के फसल के हथी दई परे नाड़ो बचाए सकते तो हुकूमत हारियों की मदद वारो सिलसिलो जारी रख पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन जमायतों जो गजल इजलास महमूद खान अचकज़ई मौलाना फजल रहमान बैरिस्टर गौर समेत समूरन मुखालिफ धुरन धुर जमायतों जहा पार्लियामेंट अगवाण मेंबर श्री शरीक जमहूरियत के बहाली लाय पार्लियामेंट के अंदर ही बाहर गजल तौर जिदोजहद करने गौर किया वो पीटीआई के हूंदे को भी इतिहाद नथो हली सके पीटीआई हर वो कम कंदी है जैखा खेस रोको वेंदो है वजीर आजम के सलाहकार राना सनाउला है तो पीटीआई बानी बाबत अदालती फैसले से हुकूमत अमल कयो पीटीआई वारन पान मीडिया टाक करे अदालती हुकूमत की भंजखड़ी कई आजाद कश्मीर के कानून साज असेंबली के नवन चूंडियल 46 मेंबर्स हलफ खणी वरतो आजाद कश्मीर असेंबली के स्पीकर नवन चूंडियल मेंबर्स का हलफ खणायो आजाद कश्मीर असेंबली के 8 मखसूस सीटों में ब नून लीग 6 सीटों से कामयाबी मारण बाद ईवान में नून लीग के सीटों जो अंग वधी एंट्री थी वो पीपुल्स पार्टी 14 सीटों माणे सकी वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात, सिंध जे मामलनि ऐं हर जारी तरक़ियाती मनसूबे ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल, सियासी सूरत हाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई, रवादारी ऐं सियासी मुशावरत वारो सिलसिलो जारी रखण ते बि इतफ़ाक़। राणा सनाउल्लाह, मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तार ऐं ॿिया बि मुलाक़ात में मौजूदु हुआ। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रज़ा केस जी जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़े छॾियो। जस्टिस उमर सियाल कमीशन जी सरबराही कंदो। जांच लाइ महीने जो वक़्तु मुक़ररु। कराची जे मेयर मुर्तज़ा वाहब चयो आहे त अदालती कमीशन ते मीर रज़ा जे वासियुनि खे सहकार करणो पवंदो, न त इहो सिलसिलो हलंदो रहंदो। जांच दौरान थियल कोताहियुनि खे साम्हूं अचणु घुर्जे। पुलिस ऐं जांच इदारा कमीशन जी मदद कंदा। हुकूमत जे तरजीह मीर रज़ा जे माइटनि खे मुतमिन करणु आहे। मीर रज़ा क़तल केस में अदालती कमीशन जोड़नि ख़िलाफ़ ऐं जे आई ए जे क़याम लाइ वारसनि जी दरख़्वास्त ते सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी। जस्टिस अदनान करीम मेमून धुरियुनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। 31 अगस्त ते जवाब तलब दरख़्वास्त में मीर रज़ा जो पोस्टमार्टम कंदड़ डॉक्टर उसामा ऐं डॉक्टर समिया के।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03005
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा
6: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजी दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 03013992836।
8: मोहम्मद उमेर गोरी 03119155724।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: Hey guys, this is Shirley Sathia. To watch the latest movies and hear the latest songs, please subscribe.
1: Aashiq Honda Showroom, Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Jupur at Mat. Aimba Akhtar 3S Dealer. Aashiq Honda Motors, Mehrapur. Jite nai motorcycle ji sale. Company aje mukarar kel rate de dastiyab ahe. Service Center. Atlas Honda Limited jo Warranty Claim Center. Service Area. Jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi ahe. Honda Company aja tamam genuine spare parts. Khususi riayat te maujood. Aashiq Honda Motors te. Pahenje Honda Motorcycle ji tuning karayo. Computerized Japanese Stitching Machine je zariye. जिन्हे में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहिक वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 0242460100
3: उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03018-65453
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 03013992836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर सुनिंग टू जी रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, सुर सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, सिंध की आवाज। हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो कि जी जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल टिपटॉप सेट कूल एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ सेट मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक। आप सुन रहे हैं सिंध की गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM। आपका और मेरा साथ रहता है, ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी है, सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक।
1: ये माना के आँखों में आँसू हैं, दिलों में बस।
0: प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:20 जो कि पाकिस्तान का मेरी वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बट अ लव द नेवर। अपनी गाड़ियों और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफजली खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा।

के बीमार हैं उनको कहने की गैजुअल्स में वो लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बड़े कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारे बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर जायज काम में कामयाब होते रहें. आमीन सुमा आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगले जी आया नू सब बिस्मिल्लाह बाजार शाम निहाओ एंड वेलकम टू जिंदगी गुजार है.

आगे जो प्रोग्राम में बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो क्या मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करूंगे. लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना इंक्लूड करने जा रही हूँ बाय कुकर स्टूडियो सीजन 9 निर्मल रॉय एंड जबर अब्बास. सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: पाकिस्तान की शान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।

0: ओके कैसे हैं भाई? ठीक ठाक. पहले तो वो कॉल कर रहे हैं.
1: जी हाँ, सब कुछ मैं आपके शो पे कॉल कर रहा हूँ.
0: अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात.
1: तो आप एक नंबर जो इतना स्पीड बताते हैं, नहीं किया था कि आप नंबर क्या बोलती है.
0: नंबर बहुत स्पीड में बताती हूँ. चले अब मैं आहिस्ता बताया करूंगी, ठीक है.
1: जी आपसे बताया करूँ तो समझ में आए ना. यहाँ की जब मेरी बीवी साथ देती है उसको भी समझ में नहीं लग रहा है.
0: क्या नहीं लग रहा था?
1: मेरी बीवी पास में खेती हुई थी, इसको मैं बोल रहा था कि नंबर नोट करना जब बाजी बताए. तो वो नोट नहीं कर पा रही थी.
0: अच्छा, चले कॉल लग गई आपकी. कब से ट्राई कर रहे हैं आप? कितने दिन हो गए ट्राई करते हुए?
1: बाजी तकरीबन 4-5 दिन हो गए मैं नंबर नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नोट नहीं कर पा रहा.
0: अरे ये तो बड़ी ज्यादती कर रही हूँ मैं.
1: इतनी तेज बता रही हूँ.
0: चले मैं आहिस्ता आहिस्ता बताया करूंगी. अच्छा गाना सुनाएंगे आप?
1: जी शमन अली बिरानी का गाना है. वही जो से दिल है दिल नदी न करे. ये
0: इसका टाइटल बताइएगा.
1: वही जो से दिल है दिल नदी न करे.
0: दिल
1: नदी न करे
0: लगी ना करे. ओके शमन का.
1: शमन अली बिरानी का.
0: ओके किसी को डेडिकेट करना है?
1: मैं अपनी बेगम को कर रहा हूँ, मेरे साथ में बैठे.
0: अरे वाह क्या बात है जी. भाभी को हम गाना डेडिकेट करेंगे. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. और भाई का गाना हम प्ले करेंगे. और गाना जो हमने सर्च किया है भाई ने जो कहा है, मेरे ख्याल से ये जो आ रहा है ना

ओके जी, गाना प्ले कर रहे हैं और मैंने सर्च करने की कोशिश की है, बट मेरे ख्याल से ये वो टाइटल के हिसाब से अलग रहे वही सॉन्ग हो. सो हम प्ले करते हैं जी शमन का ये वाला गाना और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं. आगे चलते हैं, स्टे ट्यून्ड.

0: ओके जी, एक और कॉलर लेते हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हाफिज लखमीर मोरो से बात कर रहे हैं। कैसे भाई, ठीक ठाक? जी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं? ओके, तो हाँ खाएंगे।
1: मेरा एक कल है, अगर आप पूरा करोगे तो बड़ी गैर भरी होगी।
0: हाँ जी बोले।
1: नाथ सुना होगा तो 12 रबी लेवल की रात है, सबको नाथ पहले।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
1: हरे माम नाथ रख दे इन्हा बकरिया नो, इन्हा बकरिया नो पावागी में जाला। हरे माम

0: ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇ ਹਲੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇ ਜੀ।
1: ओके जी, वेरी नाइस। और इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे?
0: हमारे दोस्त हाफिज सावन साहब और हाफिज अताउल्लाह साहब सर और मुस्कान और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं और वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: पाकिस्तान की शान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

ओके जी, साथ साथ हम चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज बाय आतिफ असलम फ्रॉम एल्बम सुबह आईना. और इसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग मैं अपने शो में प्ले करने जा रही हूँ. एंड द सॉन्ग कॉल्ड लेट्स हैव सम फन. तो उसको सुनते हैं, इंजॉय करते हैं. सॉन्ग के साथ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और न्यूज ब्रेक भी होगा. ठीक है, दोनों के बाद वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: सिर्फ एवरीडे जो बना
1: चाहता हूँ जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ इज
2: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो ईरान के सियासी ए फौजी क्यादत से मुलाकात हूं आपने हरमुज खोलन ईरान आवर का तकरार के खात्मे ते गौर घरू वजीर मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल की ईरानी क्यादत से मुलाकात के नतीजो डींदड़ करार दई छो समाजी वेबसाइट से जारी कल बयान में मोहसिन नकवी है गालन जो मोहर अमेरिका ईरान तकरार ए विच ओवर में जारी छिकतान के खात्मे ते हो इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मुकम्मिल बहाली लाए घुर्बल कदम खण से गौर किया वो ईरानी सदर मुलाकात दौरान हुकूमती मौकफ ए खदशन का आगाह कर मुलाकात दौरान थियल अहम अखबराई मुस्तबिल में मुस्बत कदम लाए रस्तों खोलन्दी खिते में जटादार अमून के क्याम लाए मददगार साबित थन्दी।

अमेरिका के ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ पंहिंजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकियुनि ऐं दबाउ सां मसला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा आहिनि। ईरानी सदर मसूद पज़ेशान चयो आहे त वाशिंगटन खे इस्लामाबाद में तय थियल मुफ़ाहिमत ते अमल करणु घुर्जे। अमेरिका खे ईरान सां मुस्बत अगबराई लाइ रवैयो तब्दील करणो पवंदो।

अमेरिका ईरान खिलाफ़ नए मुआशी पाबंदियों को ऐलान कर छो। ईरान से माली राबता रखंदड़ मुल्क के भी निशानो बनाने की धमकी। अमेरिकी नाणे वाले वजीर है त अमेरिका ईरान से समूरा मुआशी राबता खत्म कर छो। अमेरिकी दिफा वाले वजीर है त ईरान से हमला बंद नाहन कया, जरूरत पवन से हथियार बंद कार्रवाई क्यों वेंदियों। आबना हरमुज से अमेरिका जो कंट्रोल है, लंग मातेल की रस्त जारी है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते दे लाए 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री, नजद गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप, ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014531456 ऐं तौकीर अहमद 03616237390।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।
8: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557024।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

ओके जी, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं सुन की गुलजार है, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार. आपका मेरे साथ पूरी पूरी 1 बजे तक का है. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू. और हमारा सेगमेंट बोलो

ओके जी, आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से है कि गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गोरे गिनकर गाड़ी, ठीक है, ये कहना है गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए, ठीक है, ये बोलेंगे। और जब आप ये बोलेंगे तो जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा हमारे इस सेगमेंट को। तो जरूर पॉज लेंगे हम आप लोगों की और साथ साथ हम गाने को चेंज करके एक और गाना भी प्ले कर देंगे। और मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि जो मैं गाना प्ले करूँ वो बहुत अच्छा सा गाना हो और उसी गाने के साथ जो है ना हम आप लोगों की लाइव कॉल्स को एंटरटेन भी करें। और प्ले करते हैं जी फलक शब्बीर, आई गेस फलक शब्बीर FT DJ Shadow। तो सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ साथ कॉल्स लेंगे।

0: very nice song. आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 03-000-11-3488. तो आपने कहना है कि गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए, ठीक है? तो ये बोलेंगे और ये जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट को. अच्छा, साथ साथ हम कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी चलते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. तो नूर हुसैन तो नहीं हमें ज्वाइन किया है, नूर हुसैन तो नहीं, वो कहते हैं कि सिस अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सिस्टर रुखसार, आपका शो बड़ा जबरदस्त है, थैंक यू सो मच. इसके अलावा जी हम साथ साथ मैसेजेस की तरफ भी चलेंगे. तो हमें मैसेज कर दिया है मिठड़ी रुखसार, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हो? इंशाल्लाह ठीक होंगी. हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बड़ा शुक्रिया आपका. अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे और हम इंटरटेन करेंगे कॉल्स को. ठीक है, तो कॉलर मेरे से लाइन पे मौजूद है. हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: सबीर को सुपुर्दिया.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
1: जी जी बिल्कुल, गाना सुन रहे हैं मंत्र मुनि.
0: ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू. अच्छा, मेक श्योर वही लोग कॉल करें जो कि टंग ट्विस्टर बोले और टंग ट्विस्टर कहें, और वही लोग कॉल करें तो उन लोगों की कॉल्स में रिसीव करूंगी हंसी खुशी

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे ती मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 03011 96 851।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
6: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हरंदी।
7: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
8: 03013992836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, आपका और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का। और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू। कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000134888, इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग। सो कॉल्स मुझे आना शुरू भी हो चुकी हैं। सो नेक्स्ट कॉलर, हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? जी हम बलोच भाई, कैसे? ठीक ठाक,
1: अल्लाह का शुक्र।
0: ओके, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे?
1: नहीं, आप इसको रिपीट कराएंगे?
0: रिपीट करूं मैं? अच्छा चलो मैं रिपीट कर देती हूँ। गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए।
1: गुलाबी क्या?
0: गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए।
1: गुलाबी ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए।
0: चले, मजा आपसे नहीं हो पाएगा, और कुछ कहेंगे?
1: नहीं, बस कहना चाहता हूँ को ऑन कर देना, वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि फिर कॉल लगती है तो अटेंड नहीं होती है, और अगर अटेंड होती है तो फिर वो आपको अगर आप कहेंगे शिकायत दे रहे हैं कि
0: अटेंड होती है तो क्या होता है?
1: डबलिंग अभी भी डबलिंग हो रही है, मैं अपनी वॉइस खुद सुनता हूँ।
0: चलें, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू सो मच। और ये जो कॉल लगती है या नहीं लगती है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं कोई यहाँ पे फेवरेटिज्म बैठ के नहीं चला रही। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को मानो और यकीन करो, मैं कोई स्पेशल लोगों की कॉल नहीं उठा रही, बल्कि मैं तो ये ट्राई करती हूँ कि नए लोगों की कॉल लगे। और देखें, अब तो फिर मतलब कि जो लोग डेली कॉल करेंगे उनकी कॉल भी मैंने जो है ना लिमिटेड कर दी है, मतलब वो 3 दिन के बाद कॉल करेंगे। तो ये कुछ ऐसा रूल है, कुछ ऐसा सीन है। तो अब ये कॉल नहीं लग रही और लग रही है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो अब इसका क्या किया जाए मुझे बताएं ना। मतलब कॉल नहीं लग रही तो मैं कैसे आपकी आके कॉल लगाऊं, कोई यहाँ से जादू कर दूं, कोई कोई रेडियो के टावर में कोई ऐसी स्पेशल सेटिंग कर दूं कि आपकी कॉल लग जाए, क्या किया जाए। चलिए, खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं, कुछ ज्यादा लंबा हो गया, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट कॉलर, हेलो।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, मां किशोर, क्या हाल चाल?
2: शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि टंग ट्विस्टर बोलने आए या गाना सुनाने आए?
2: शिकायत करने आए।
0: शिकायत? आपकी भी शिकायत है?
2: आपकी भी, मतलब और किसी की?
0: सॉरी,
2: मैंने कहा आप और किसी की इतनी शिकायत?
0: हाँ, अभी देखें, अभी जो लास्ट कॉल गई है ना, उन्होंने भी इतनी मतलब वो जब भी आते हैं वो शिकायत ही करते हैं, और अभी भी वो शिकायत ही करके गए। और बहुत सारे कॉलर्स की शिकायत ये होती है कि हमारी कॉल तो लगती नहीं है और आप उठाती भी नहीं है।
2: नहीं, शिकायत करनी चाहिए।
0: हाँ, शिकायत करनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी शिकायत के जिसकी लॉजिक भी आपको पता हो, और फिर वो आप बार बार शिकायत करें ना, तो फिर ये बनती नहीं है।
2: अच्छा, तो मेरी शिकायत है आप?
0: मैं क्या करूं?
2: मैंने कहा मेरी शिकायत सुनिए।
0: हाँ जी, सुनाए सुनाए, मैं बिल्कुल शिकायत सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ आप सब लोगों की।
2: अच्छा, आपको पता है आपका शो कहीं लाइव चल रहा है?
0: हाँ, कहाँ
2: चल रहा है?
0: कहीं लाइव चल रहा है? नहीं, लाइव ये रेडियो पे चल रहा है, और कोई फेसबुक पे स्ट्रीमिंग नहीं है। हाँ, पोस्ट है वहाँ पे।
2: रेडियो के लिए मैं कर रहा हूँ।
0: स्ट्रीमिंग पे नहीं चल रहा है?
2: नहीं चल रहा अभी कहीं, जैसे लड़काना भी तो उन्हें चल रहे हैं, कभी आपकी आवाज आ रही है तो कभी फोन चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
0: अच्छा, और सखर स्ट्रीमिंग भी नहीं चल रही है?
2: सखर तो नहीं चल रही, कल भी नहीं चल रही। आपको पोस्ट पे बताते हैं, आप वो तवज्जो नहीं देती।
0: چلے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں چل رہی. بالکل آپ بتایا کریں. اور
2: آپ یہ بھی ریگولر لسنر ہیں, آپ کے شو میں کیوں نہیں آ رہے, وجہ ہوگی نا کوئی.
0: یہ واقعی پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, میں واقعی ایگری کرتی ہوں اس بات سے. اگر تو کوئی ایشو ہے
2: آپ کو پتا ہے, ہم جو ہے نا جو سن کر ہی آپ کے شو میں شامل ہوتے ہیں, ورنہ ایسے خام کا جو سنتے ہیں آگے بہت پہنچ جائیں, کیا پتا کیا ٹاپک ہے کیا سوال ہے.
0: میں بالکل اس کو دیکھتی ہوں کہ یا اور اسٹیشنز پہ کیوں نہیں کنیکٹ ہو رہا ٹائملی. ہم اس کو ٹائملی بھی کنیکٹ کرواتے ہیں اور اسٹریمنگز پہ بھی جو ہے نا صحیح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایشو
2: ہوتا ہے. وہ بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں بھائی ہم چلا جاؤں. جب کمنٹ آپ کرتی ہو وہ کمنٹ نہیں آتے, کوئی کالر آتا وہ نہیں آتا, سمجھ نہیں آتا شو چل رہا ہے یا کچھ اور.
0: چلے جی, تھینک یو سو مچ فار یور کمپلین. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
2: شکریہ, تھینک یو,
0: تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور دیکھیے کمرشل بریک ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا, سو ہم کمرشل بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں کمرشل بریک کے ساتھ, اینڈ دین پھر کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.
3: جی سکھر FM 88, سکھر کی آواز.

यू सो मच ऐसा आरुष, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अच्छा, साथ साथ मैसेजेस हैं आप लोगों के मेरे पास, और महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं जी, और कहते हैं कि सखर की कुंज. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? हाय, आपको प्रोग्राम की क्या बात है. अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन. कुंज फायजा का नया सॉन्ग सुनाओ. थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू. कुंज, कुंज कुंज का मतलब क्या है ये आप मुझे बताइएगा प्लीज. एंड हियर कम्स द ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय रिजवान अनवर. सुनेंगे, आगे चलेंगे.

0: ओके जी, और मैं कोशिश करूंगी, मैं लास्ट में एक और कॉलर ले लूं, लास्ट में लकी कॉलर. हेलो हेलो, कोई है? ओके जी, कोई नहीं है. मेरे ख्याल से हैंड फ्री सेट हो रही थी या फोन का स्पीकर खोला जा रहा था. खैर, नेक्स्ट कॉलर, एक और ट्राई. हेलो, वालेकुम सलाम सरदर्द, क्या हाल चाल? मैं बहुत अच्छी हूँ. आज की अच्छी बात बता दो जल्दी से. नहीं, टाइम लिमिटेड है और हम जा रहे हैं बाय बाय करके.
1: ये आती आती बात, जब भी वक्त मिले उनसे खुशी से दिया लिया करो, क्योंकि नोट करते याद ही आती है वक्त में.
0: ओके, वेरी नाइस, थैंक यू. कुछ और कहना है? थैंक यू सो मच, सो स्वीट सरदर्द. इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत और हम प्ले करेंगे लास्ट में बिलाल सईद की आवाज को. और फाइनली फाइनली हम जाएंगे ख्वाब देखने के लिए. सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी. Love simple but think high. So this is me, RJ Rukhsar, signed out. Take care. Goodbye. Amani khuda. Allah Hafiz.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो ईरान जे सियासी है फौजी कयादत से मुलाकातों आपने हरमुस खोलण ईरान अमेरिका तकरार के खात्मे ते गौर घरु वजीर मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल जी ईरानी कयादत से मुलाकातन के नतीजो दींदड़ करार दई छो। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में मोहसिन नकवी चयो आहे त गालिन जो महूर अमेरिका ईरान तकरार ए विच ओवर में जारी छिकताण के खात्मे ते हो। इस्लामाबाद मुफामती यादाश्त के मुकम्मिल बहाली लाए घुर्बल कदम खण ते गौर कयो वियो। ईरानी सदर मुलाकात दौरान हुकूमती मौकफ ए खदशन का आगाह कयो। मुलाकात दौरान थियल अहम अखबराई मुस्तकबिल में वधीक मुस्बत कदमन लाए रस्तो खोलींदी ए खिते में जटादार अमुन के क्याम लाए मददगार साबित थींदी।
2: अमरीका के गाल बहाली लाए पांजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकिन ए दबाव से मसला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त वाशिंगटन के इस्लामाबाद में तय थे अमल करण घुर्जे। अमरीका के ईरान से मुसबत अखबराई लाए रवैयो तब्दील करणो पवंदो।
1: अमेरिका ईरान खिलाफ नई मुआशी पाबंदी जो ऐलान कर छो। ईरान से माली राबता रखंदड़ मुल्क के भी निशानो बनाने की धमकी। अमेरिकी नाणे वारे वजीर है त अमेरिका ईरान से समूरा मुआशी राबता खत्म कर छो। अमेरिकी दिफा वारे वजीर है त ईरान से हमला बंद नाहन कया जरूरत पवण से हथियार बंद कार्रवाई क्यों वेंदी। आबना हरमुज से अमेरिका जो कंट्रोल है। लंग मा तेल की रसबेज जारी है।
2: अमरीका पासदार इनकलाब के सीनियर अहदेदार की जान दियण से एक करोड़ डॉलर इनाम रखने जो ऐलान। फरस्त में कमांडर अहमद वहीदी अब्दुल अई अहमद रजा बेन जहा नाला शामिल। अमरीका से जंग दौरान शहीद थियल सईद आकाजानी ए मजीद खादमी जहा नाला भी शामिल। ईरानी अहदेदार अमरीकी फौज ने हंधन से हमलों को इल्जाम।
1: नायब वजीर आजम इसहाक डार जो तुर्किया के परे वजीर खाकान फेकदान से फोन से राबो। बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल परे खाते मौजूद बिन्हीं अगवाण रीजनल फोर्स के एंड इजलास बाबत भी ख्याल की डेवट कई वही। बिन्हीं अगवाण मौजूदा सूरत हाल से राबन में रहने पर भी इतफाक किया।

0: छा अदालत जी आईटी जोड़न लाइ सीधी रीत हुकुम जारी करे सघे थी, छा अदालत जांच ऐं रिपोर्ट जमा करण वारे अमल तब्दील या निगरानी करे सघे थी। सिंध हाई कोर्ट मीर रज़ा केस बाबति लिखित में हुकुम जारी करे छॾियो। अदालत हुकुम में चयो आहे त सिंध ट्रिब्यूनल इंक्वायरी आर्डिनेंस 1979 तहत गज़ेट नोटिफिकेशन खां सवाइ मुदाख़लत जो केस ठहे थो। सिंध हाई कोर्ट एजी सिंध ऐं डिप्टी अटॉर्नी जनरल समेत धुरिन खे मुआवनत लाइ नोटिस जारी करे छॾिया।
1: जेका बा जे सुई गैस ऑफिस भरिसां हथियारबंद जी कार ते फायरिंग, नौजवान कतल नामालूम जवाबदार कार में सवार थी हक भाऊ पाड़े वासी अख्तर अली चांडे खे गोली हणी कतल करे छॾियो। लाश अस्पताल मां ज़रूरी कार्यवाही बदवासन हवाले कयो। पुलिस चयो आहे त वाकिए जी जांच करे रहिया आहियूं।
0: खैरपुर भरिसां फुर मज़ामत ते कतल थियल इंजीनियर फैसल गुलज़ार भुट्टो जे वारसन जो जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ धरणो। मक़तूल इंजीनियर जे वारिस औरतन ऐं मर्दन शाह हुसैन बाईपास ते धरणो हयो। मुज़ाहिरीन चयो आहे त फैसल गुलज़ार भुट्टो खे क़तल कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।

0: अठहठ मोरी भरसा सीआई पुलिस नवाब शाह पारा अठन जणन के कमंदे फसल में ना कैद करे हथ कड़ी उणी लिकायण जो निक्षाप कैद कयल अठन जणन के कमंद जे फसल में कैद करे रखण वारा फुटेज केटीए न्यूज हथ करे वरता। पुलिस कैद में मौजूद छेरन मुजिब खेन रात का कमंद फसल में रखियो आए डुह की खबर ना।
1: झंडो मरी वेझो मैट्रिक के शागिर्द जो गोलियों लगल लाश हथ गोट रजाक मगर वासी 17 वरन जो मोहम्मद उर्स पुट मोहम्मद सुमार मगर जो लाश मिलो। वारसन जो चवण है तो फुटिन के फसल से चौकी रही रहा हुआसी नौजवान इतफाकी गोली लगन सबब फौत हुआ है। पुलिस मौजूद वधिक जांच कर रहा हूं।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
4: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
5: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा। छो परेशान आई
6: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
2: पायदार शूज ए टू जेड यूनिफॉर्म ते मिले अमा के यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, शूज, ऐं बियो स्कूल जे जरूरत वारो सामान बाजार का इंतहाई घट कीमत में।

0: स्कूल सिस्टम मेहरा पर। कॉन्टैक्ट नंबर 0301-3865-453।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरावपुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती। आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है वो जरा दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि उन लोगों को भी पता चल सके जिन लोगों को नहीं मालूम कि आज के प्रोग्राम का सवाल क्या रखा गया है। तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल है वो ये है कि आपने मुझे बताना है कि एक इंसान का सबसे पावरफुल वेपन क्या होता है, यानी कि हिकड़े मानो जो सब खां पावरफुल हथियार केड़ो आए जेको हु यूज करे पांजी जिंदगी में तो हु शायद कामयाब थी सके। तो उन जो दिमाग आहे, उन जी जबान आहे, या वरी उन जो सब्र आहे। सो आप इस सवाल का जवाब मुझे बताने वाले हैं और मुझे ज्वाइन करने वाले हैं 881 पर। आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, बिल्कुल जी शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने भी लिस्ट में हैं जो कि हम जाहिर सी बात है आप लोगों को सुनाएंगे और आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग जो हमें ज्वाइन करते हैं ना उनको इस चीज का पता होना चाहिए कि भाई जान प्रोग्राम में जब आप मुझे ज्वाइन करें तो टॉपिक को लाजमी फॉलो कर लिया करें, क्योंकि जब लोग आप टॉपिक को फॉलो करते हैं तब यकीन होता है कि भाई जान टॉपिक को फॉलो करने वाले लोग कितने ज्यादा है। वैसे तो बहुत से लोग मैसेज कर देते, बस एक छोटा सा मैसेज छोड़ दिया और गाना लिख दिया, बस बात ही खत्म हो गई। लेकिन जब आप मैसेज कर ही रहे हैं तो टॉपिक को भी फॉलो कर लिया करें, ये अच्छी बात होती है। ओके जी, तो बिल्कुल आपके मैसेजेस की जाने आएंगे।

ओके जनाब, तो जी बिल्कुल यहाँ पर मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए गाना भी मौजूद। तो मैं सोच रही थी कि पहले हम ऐसा करते हैं कि गाना लगा लेते हैं, पहले हम गाना लगा लेते हैं और गाना सुनते सुनते आप लोगों के साथ बातें करते रहेंगे, ठीक हो गया। तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गाना लिस्ट में सेट कर दिया है, ये गाना आप दोनों के साथ हम सुनेंगे, आप सब लोगों के साथ सुनेंगे बल्कि दोनों के साथ ही गया। तो गाना एंजॉय कीजिए और मुझे बताएं आपको क्या लगता है एक इंसान का सबसे पावरफुल हथियार क्या होता है, उसका दिमाग, उसकी जबान या फिर उसका सब्र।

सुबह के जैसा होता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो समझ नहीं आती, और प्यार भी उन्हीं बातों में एक ऐसा, यानी कि जब प्यार हो जाता है तो इंसानों को कुछ भी समझ नहीं आता, तो बिल्कुल वैसे ही प्यार वो बला है जो समझ ही नहीं आए। ओके जी, तो गाना एंजॉय करेंगे लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने पाते हैं। तो चाचा खालिद हमें सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, की आयो, खुश आयो? हाँ जी बिल्कुल खुश आया, ताम बताया की आयो, ठीक ठाक आयो। इरम कहती है अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, हाँ जी आपको वेलकम कहा जाता है। और दादू खां इमदाद जतोई है, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफायतुल्लाह जतोई, आप सब मिलकर हमारा प्रोग्राम एंजॉय करें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको वेलकम कहा जाता है। और महबूब अली हमारे साथ है मोरो सिटी से, कहते हैं लाड़काना की कुंज, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हमेशा खुश रहे सिस्टर सिद्रा, कुंज शायद बबर का गाना तो सुनाना, हाजिर साईं हाजिर, तांजो फरमाइशूं हलाईंदासीं न हलाईंदासीं त गाडे वेंदासीं, बिल्कुल तांखे प्यारो सोनो शायद बबर जो गानो बुधराईंदासीं। उनका अलावा हमारे साथ ही चाचा खाले दोबारा कहते हैं बेटा सिडो, अज भी सॉन्ग जी रिक्वेस्ट आहे, तवा गानो लिखियो आ, ठीक आ, यो गानो हलाए वठूं ता तवा जे लाई, आई मोहब्बत वां ता सब असन प्रोग्राम बुधो पया, टॉपिक के फॉलो कयो था कोन कयो बाबा कयो, टॉपिक के फॉलो कंदा कयो। उनका अलावा जिकी मानो असा के हाणी हाणी ज्वाइन कंदा वणन पया, उनन के चोंदा भली करी आया ता जो पांजो प्रोग्राम आहे। आई सवाल तवा का यो पुछो आ, जकेडी मानो जो सब खां पावरफुल हथियार केडो हुंदो आहे क इंसान जो, उन जो दिमाग हुंदो आहे, उन जी जुबान हुंदी आहे, या वरी उन जो सबर हुंदो आहे। अक्सर ही हुंदो आहे कुछ मानो जी जुबान एतरी त खतरनाक हुंदी आहे मानो उन का थोड़ो पासो कंदा आहे, आई पासो इन वजह से नाइन कंदा त हु मानो उन खां डजंदा आहे, बल्कि इन वजह से कंदा आहे जो त कई मतलब ता डठो हुंदो त के मानो जी जुबान सा भी खोर सारे मानो जो नुकसान थिंदो आहे, आई कुछ मानो जो दिमाग भी रोंदो आहे, कुछ मानो जो दिमाग एडो शातिर हुंदो आहे जो उन जे दिमाग ही चालाकिन जी वजह से खोर सारे मानो जो जिंदगी खराब थी वेंदी आहे। आई हां सबर वरी ओ हथियार आहे जेको अगर मानो पांजी जिंदगी में एड करे तो तप बाबा बेड़ो ही पार आए। तो ता बुधायो तमा के साथ लगे एक इंसान जो सब का पावरफुल हथियार केड़ो थी सके तो।

जी कितना प्यारा गाना है, सुन रहे हैं ना? बिल्कुल जी, सुनिए, आप लोगों के लिए लगाया मैंने लिस्ट में यहाँ पर हमारे साथ ही जी महबूब अली मोरो सिटी से कहते हैं, सिस्टर इंसान का सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार उसका सबर होता है। ओके ओके। सुल्तानपुर खां अब्दुल गनी जुने जो हमारे साथ ही कहते हैं सलाम सिदरा मुस्कान, वालेकुम असलाम, कहते हैं शो नाइस है जवाब सबर, सबर जिनजो सेर तिर तीर न घुसे तिनजो। सही सही, ॾाढो वीआईपी तव्हांजो मैसेज। ऐं उन खां अलावा हे जी हमारे साथ चाचा खालिद कहते हैं सबर और शुक्र ऐसा हथियार है जो इंसान को कभी भी झुकने नहीं देता सिवाय एक अल्लाह पाक के। योर टॉपिक आंसर। ओके नाइस। अच्छा ये हमारे साथ हैं दिल रुबा कहती हैं फ्रॉम नौशेरो फिरोज, हाय आपी जान कैसी हैं, नाइस शो मास्टर मंजूर तू प्ले करना, हाजिर हाजिर सबने जो फरमाइशों हलायूं था कोई भी न रह जंदो। उन खां अलावा हमारे साथ हैं जी ये हेलो आपी कैसी हैं आप, टॉपिक का जवाब है सबर करो अल्लाह कामयाब कर देता है। सितारा हमारे साथ हैं, सितारा क्या कहती हैं, आप मेरी फरमाइश पूरी नहीं करती हैं, फरमाइश आपका अहमद बुबुल का गाना लगाएंगे जी आज, आप टेंशन क्यों लेते हैं। ओके जी, सितारा को वेलकम इन, खुश आमदीद कहा जाता है। दादू का फारूक हैदर जतोई हमारे साथ कहते सबर पर गानो बुधायो मास्टर मंजूर जो। ओके तमाम गानो लिखियो आए, ठीक है मां कोशिश कयां थी तां जी पसंद जो गानो हलाईंदासीं, न त मास्टर मंजूर जो कोई भी भलो भलो गानो हलाए छॾींदासीं, ठीक आहे। सो थैंक यू तमाम से गॾु आहियो।

ओवी जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय किया। एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि जाहिर सी बात है हम मिलकर एंजॉय करने वाले हैं। ये होने वाला है जी राहत फतेह अली खान साहब की आवाज, बहुत ही प्यारा गाना हम सासा सुनेंगे। और आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं बिल्कुल जी आपके मैसेजेस, और उनखा अलावा टॉपिक ही तमाम फॉलो कर दो वन पाया। टॉपिक मां का पुछो है त एक इंसान जो सब खां पावरफुल हथियार केड़ो थी सके तो उन जो दिमाग उन जी जबान या वरी उन जो सबर। पर यह गाल भी बिल्कुल सही है, दिमाग होंदो त उनके खबर पड़ी सब चीजों की क्या सही है क्या गलत है। पर अगर दिमाग न होंदो वरी उनके या भी खबर न होंदी त जबान के किथे केड़ी तरीके से यूज करनो है त यो भी सही ना है। अगर ये भी ना है त बस इंसान हर चीज दे बैठो सबर करे। हां सबर करनो हो जे जते तोते करण खुजे जते सबर न करनो हो जे तोते हरगिज न करना करो। क्योंकि कई मरतब आपने इस चीज को भी नोटिस करा होगा कि बहुत से लोग जो कि इस तरह के होते हैं भाई, जो जिन्हें कुछ भी किया जाए, हाँ जी कुछ भी किया जाए, लेकिन वो हर वक्त सिर्फ सबर करते रहते हैं, तो फिर उन लोगों को दुनिया जो है ना वो क्या बना देती है और वो क्या बन जाते हैं। ये चीज भी आपने शायद नोट करी होगी। लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, आपका इस टॉपिक के ऊपर क्या जवाब होगा। और वहां मैं जमान हमारे साथ है, वेलकम बुआ जी। टॉपिक अकल ओके सही है जी, वेलकम कहते हैं आपको भी, खुश आमदीद। और ऐसे सुनते रहिए प्रोग्राम, शामिल प्रोग्राम होते जाइए। यहाँ पर ये प्यारे सा गाना एंजॉय कीजिए। गाने के बाद हम जाएंगे जी न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास। सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए, पूरे पूरे 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे क्योंकि हम आपके साथ मौजूद रह रहे हैं। तो यूं जाकर यूं वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88.8 FM। आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर
1: KTN मफामत अमल कण घुर्जे। अमेरिका के ईरान से मुसबत अग्राई लाइ रवैयो तब्दील करणो पवंदो।

0: अमेरिका ईरान खिलाफ नए मुआशी पाबंदियों को ऐलान कर छो। ईरान से माली राबता रखंदड़ मुल्क के भी निशानो बनाने की धमकी। अमेरिका नाणे वाले वजीर है तो अमेरिका ईरान से समूरा मुआशी राबता खत्म कर छो। अमेरिकी दिफा वाले वजीर है तो ईरान से हमला बंद नहन कया। जरूरत पवण से हथियार बंद कार्रवाई क्यों वेंदू। आपना हरमुज से अमेरिका जो कंट्रोल है। लंग में तेल की रसबिज जारी है।
1: अमेरिका पासदार इनकलाब के सीनियर अहदेदार की जान दियण से एक करोड़ डॉलर तक इनाम जो ऐलान। फरस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अली अब्द वहीद, अहमद रजाजा ए बया नाला शामिल हैं। अमेरिका से जंग दौरान शहीद थियल सईद अकानी ए मजीद कादमिया नाला भी शामिल। ईरानी अहदेदार अमरीकी फौजन ए अड्डन से हमलों को इल्जाम।
0: नायब वजीर आजम सबदार जो तुर्किया के परदेही वजीर हकान फुगदान से फोन से राबतो। बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गालू। परदेही खाते मौजूद बिन्हीं अगवान रीजनल फोरम के ईंदड़ इजलास बाबत भी ख्याल की डेवट कई वही। बिन्हीं अगवान मौजूदा सूरत हाल से राबतन में रहने से भी इतफाक कर।
1: वजीर आजम समेत कैंप खिलाफ बेतमादी रिथान अपोजिशन जो हक है। रोके नो सके वक्त अचण से डिठो वो। कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक है कोरम पूरा कर स्पीकर न पर हुकूमत ए अपोजिशन जिम्मेवारी है। अज इजलास में बेहतरी आई है सुधी कानून साधी बाबत अपोजिशन जो इताद थियण सुठी गाल है। कमेटी तथा पीटीआई जो डिनल इस्तीफाओं कबूल नायन क्यों गाल दावत दई थक पाया हाँ अपोजिशन अगत तो असा भी बदलासी।

0: सुप्रीम कोर्ट पीटीआई वाणिज्य इलाज बाबत दाखिल तोहीन अदालत की दरख्वास्त एतराज लगाए वापस कर छी तोहीन अदालत की दरख्वास्त इल्जाम वाजे करण की हिदायत चेयरमैन बैरिस्टर चयो आहे त एतराज खत्म करे अज ही दरख्वास्त दाखिल कराई वेंदी बानी सां खानदान की मुलाकात जरूरी आहे।
1: छा अदालत जीआईटी चवण लाइ सिधी रीत हुकुम जारी करे सघे थी? छा अदालत जांच ऐं रिपोर्ट जमा कराइण वारे अमल तब्दील या निगरानी करे सघे थी? सिंध हाई कोर्ट मीर रज़ा केस बाबति लिखित में हुकुमनामो जारी करे छॾियो। अदालत हुकुम में चयो आहे त सिंध ट्रिब्यूनल इंक्वायरी आर्डिनेंस 1969 तहत गज़ेट नोटिफिकेशन खां पोइ मुदाख़लत जो केस ठहे थो। सिंध हाई कोर्ट एजी सिंध ऐं डिप्टी अटॉर्नी जनरल समेत धुरनि खे मावनती लाइ नोटिस जारी करे छॾिया।
0: जेको वाजे सुई गैस ऑफिस बरसात थियारबंदन जी कार ते फायरिंग नौजवान कतल नामालूम जवाबदारनि कार में सवार हकबाऊ पाड़े वासी अख्तर अली चांडियो खे गोलियूं हणी कतल कयो। लाश अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले। पुलिस चयो आहे त वाके जी जांच करे रहिया आहिनि।
1: खेरपुर भरिसां पुर मज़ामत ते क़तल थियल इंजीनियर फैसल भुट्टो जे वारसनि जो जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ धरणो। मक़तूल इंजीनियर जे वारसनि औरतुनि ऐं मर्दनि शाह हुसैन बाईपास ते धरणो हयो। मुज़ाहिरीन चयो त फैसल भुट्टो खे क़तल कंदड़ जवाबदारनि खे फौरी तौर ते गिरफ़्तार कयो वञे।

0: अठहठ मोरी भरसां सीआई पुलिस नवाबशाह पारां अठ ॼणनि खे कम जे फसल में नाह कैद करे हथकड़ियूं हणी लिकाइण जो इंकशाफ़। कैद कयल अठ ॼणनि खे कम जे फसल में कैद करे रखण वारा फोर्टिस केटीएन न्यूज़ हथ करे वरिता। पुलिस कैद में मौजूद शहरनि मूजिबि खेनि राति खां कम जे फसल में रखियो वियो आहे, ॾोह जी ख़बर नाहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300320437202 ऐं 0242460100।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
5: मोहम्मद उमेर गोरी 0319।

0: होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

मैं जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम सी। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम में हम आप लोगों के साथ मौजूद है जनाब प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं जो लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने हमें अभी अभी सुना स्टार्ट किया होगा उनको वेलकम करने के साथ साथ ये बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल जो पूछ लिया है तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप हमें मैसेज करें शामली प्रोग्राम हो जाए तो आप लोग टॉपिक को भी लाजमी फॉलो कर लें। तो आज का जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो कुछ इस तरह है कि आप मुझे बता रहे हैं कि एक इंसान का सबसे पावरफुल हथियार कौन सा होता है, उसका दिमाग, उसकी जबान या फिर उसका सब्र। तो अगर आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं तो आप हमें 888-1 पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के अलावा जिनको नहीं मालूम कि हम कैसे पैनल पर मैसेज करेंगे तो ऐसा कीजिए अपना सेल फोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1 पर। ये तरीकेकार हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पर सुन सकते हैं यानी कि बहुत से लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद होते हैं फेसबुक पर हमारा शो सुनते हैं। जहां जहां पर हमारा शो नहीं चलता रेडियो के थ्रू तो आप हमें फेसबुक पर सुन सकते हैं। तो पोस्ट को जो है वो लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि बहुत सारे लोगों को हमारा प्रोग्राम जो है वो पहुंच सके और वो भी हमारा प्रोग्राम सुन सके। ओके जी, इसी के साथ साथ आप लोगों के पसंद के गाने जो हैं वो लिस्ट में सेट होते हैं जो कि आप लोगों की चॉइस के ऊपर होते हैं। कुछ आप लोगों की पसंद होती है, कुछ हमारी पसंद होती है, कुल मिलाकर आप लोगों के ये प्रोग्राम पेश किया जाता है। ओके, सो बिल्कुल आपकी पसंद के गाने सुनेंगे।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हमने यहाँ पर इंजॉय किया. और इसी के साथ साथ गानों की फरमाइशें भाई आप लोगों की मैंने लिस्ट में लगा ली है, क्योंकि आप लोगों की जब चॉइस प्ले नहीं होती तब आप थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, तो आपकी नाराजगियाँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि मनाना तो आता नहीं है हमें. चलें जी, ये सितारा की चॉइस के ऊपर हमने लगाया है अहमद मुगल का गाना. तो सितारा भी बाबा हथन मामनी भाई गानों सितारा के डेडिकेट आए. अच्छा तमिल जी करिए, इंजॉय करिए.

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1557-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब मेहरापुर और साथ साथ लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्राव के साथ मौजूद है। मेरे साथ जितने भी प्यारे प्यारे लोग मौजूद है सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, तो आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में और जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर मेरे साथ मौजूद है सभी को कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना सुन रहे हैं जो कि सागरशा की आवाज में है, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल जी आपके मैसेजेस की जानिब आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि हमारे मैसेजेस कब शामिल प्रोग्राम किए जाएंगे। तो बिल्कुल जी अभी किए जाएंगे। तो जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी अनीस अली चन्ना, चनेसर हुसैन बलोच, गुलन माँ खुशबू पर गुलाब न मिलियो, पिरन के चाहियो हकीकत, खिताब सो खिताब न मिलियो, ऐं चौथा टॉपिक जवाब हकीकत में हथियार सब खां तेज अखियूं हूंदियूं आहिनि। अखियूं सही सही अवेश चना में सुन रहे हैं जी, आपने लास्ट में ये लिख दिया है, सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा हमारे साथ ही हाय बाजी, कैसी हैं आप, आई एम राबिया फ्रॉम हाजन शाह। ओके राबिया हमें सुन रही हैं हाजन शाह से, राबिया आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है स्वीटी। और जी गुलाम फातिमा हमें सुन रही हैं, गुलाम फातिमा हमें सखर से सुन रही हैं, तो प्यारी छोटी गुलाम फातिमा को दिल से वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। रोज आप हमारा शो बड़े शौक से सुनती हैं गुलाम फातिमा, थैंक यू। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर हमारे साथ, सलाम बाजी, टॉपिक दिमाग और सॉन्ग सुनाओ शाहिद बब्बर का, थैंक यू। शाहिद बब्बर तो गाना गा कर चले भी गए, आपने सुना होगा। और ये हमारे साथ हैप्पी हैप्पी फाइजा, वालेकुम अस्सलाम, सिटो जाने क्या हाल है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मिस मी आर नॉट, यस आपको बहुत मिस किया कहती है, बट आई मिस यू मोर माई क्यूट आरजे, थैंक यू वेरी मच हैप्पी फाइजा। और कहती है घर से कुछ सामान लेने आई थी तो सोचा आपसे मिलती हुई जाऊँ, वापस गाँव जाऊंगी, हमारे यहाँ तीन शादियां हैं, माता फुल मजे में, आप फुल मजा कहो, बाबा फुल मजा कहो। इरम कहती हैं दिलबर आप ही जवाब, अच्छा क्या देती हैं जवाब, सबर। और प्लीज प्ले रऊफ मक्सी का गाना, मां कोशिश कयां थी गानो टाइम बची हलाए, तो न त असां पंज बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधंदासीं, ठीकु आहे। अच्छा ये हमारे साथी गोठ पाबू वीरो थर पार्कर से दिलीप कुमार मेघवार, नवल राय मेघवार, दानिश कुमार, ओके एतिरो तव्हांजो मैसेज आहे, लॻे थो अॻिते मिसिंग पार्ट थी वियो आहे, वरी ॿियो तव्हां मैसेज कया जवाब ॾिनो आहे, तव्हां जवाब वारो मैसेज बि तव्हांजो थोरो मिसिंग पार्ट थी वियो आहे। सो थैंक यू सो मच, तव्हां सां गॾु मौजूद आहे, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि बाबा, प्रोग्राम में तव्हां जॉइन कंदा आहियो। चाचा ख़ालिद कहते हैं कि ख़ुशि रहने के लिए अपनी ज़िंदगी से ज़हरीले लोगों को निकाल दें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उन खां अलावा बीहर मैसेज किया चाचा कहते हैं मनाना भी आपको आता है बेटा, सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता, क्या क्या सीखूंगी मैं। अच्छा ये हमारे साथ हैं बाजी, मुझे एक सॉन्ग तो सुनाएं तेरे बिन ड्रामे का प्लीज, राबिया हमारे साथ है। ओके ओके राबिया, आपकी पसंद का गाना बिल्कुल लिस्ट में है, आप लाजमी इंजॉय करेंगे।

0: सोनो खान उन्हनि सोनन माण्हुनि खे ॾिठी जेके मास्टर मंसूर जे गाने जी फरमाइश कंदा
1: आहिनि.
0: अच्छा, हमारे साथ दिया परी मौजूद है. दिया परी, क्या बात है भाई, आप हमारे साथ पैनल पर मौजूद. कहते कैसी है स्वीटी सफा भली, तां बुधायो प्यारी की आयो. कहते प्लीज प्लीज सॉन्ग राहत दिल के तार राहत त अच्छे गानो गाए भी वयो. यो गानो जो असा पंज बजे वाले प्रोग्राम में बुधूं था, ठीक है. डेडिकेट अली मुर्तज़ा. ओके, हमारी प्यारी दिया परी हमारे साथ मौजूद. उन खां अलावा मौजूद हैं जी हमारे साथ मोहम्मद जमान भाई. कहते हैं कि जालिम ने कहा आप हमें सॉन्ग नहीं सुनने देती, हम तो आपकी महफिल में आते हैं, आपकी मीठी आवाज सुन सके, आपके अंदाज को समझ सके, ऐसी अच्छी बातें शेयर कर सके. बहुत शुक्रिया जी. और ये मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम अलैहि सलाम अदर प्यारी मुस्कान. मायरा हमारे साथ है. मायरा आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. थैंक यू, आप हमारे साथ है.

ओके जी, कितना खूबसूरत गाना है और साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है जी। अच्छा, टॉपिक को भी फॉलो करते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्यारे लोग हैं जिनको टॉपिक का पता ही नहीं होगा। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं जरा कि आपको क्या लगता है एक इंसान का सबसे पावरफुल हथियार कौन सा होता है, उसका दिमाग, उसकी जबान या फिर उसका सब्र।

स्वागत जी हमारे साथ हैं झुलरी खां खालिक लाशारी के शो नाइस आहे। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। और हमारे साथ ही हमारी प्यारी हैप्पी फायजा कहती हैं कि सिडो जानी आप मुझे अच्छी लगती हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी रेडियो मत छोड़ कर जाना, आपके बगैर जिंदगी अधूरी है। माई क्यूट आरजे लव यू सो मच, लव यू हजार मच। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, आपकी मोहब्बतें हैं जनाब। और उनका अलावा असान से प्रोग्राम जो लास्ट ट्रैक जो वो लिस्ट में लगाए छो आए ही वारो गाना बुदना सी राबिया फरमाइश कही हुई बाकी जिनकी फरमाइश रहिजी वही थी तो उन्हें माजरत करी वी। बाकी तो असा पंजी बजे वाले प्रोग्राम में तक रह लगाना है वो हल्ए वी। ठीक है, का टेंशन ही ना है बाबा, दिल जाए कयो, दिल वही कयो।

ओके जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हर चाहत मोहब्बत नहीं बनती और हर मोहब्बत नसीब नहीं होती। कुछ लोग दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि इंसान उन्हें अपनी तकदीर समझने लगता है, मगर वक्त आकर बता देता है कि ख्वाहिश और मुकद्दर दो अलग चीजें हैं। जिंदगी का एक तलख सच ये भी होता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में तो आते हैं और हम उन्हें लोगों को पूरी सच्चाई से चाहते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनका इंतजार करते हैं, मगर वो हमारे हिस्से में नहीं लिखे जाते। मोहब्बत भी हमेशा रिस्क की तरह होती है, उसे मांगा जा सकता है, चाहा भी जा सकता है, मगर छीना नहीं जा सकता। फिर एक वक्त आता है जब इंसान समझ जाता है कि हर पसंदीदा चीज अपनी नहीं होती और हर अपना समझे जाने वाला शख्स भी हमेशा अपना नहीं रहता।

अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मुंह कहिड़ो डो कयो तव्हां जो गानो थोरो ईअं हो त उन जी साउंड क्वालिटी थोरी ठीक नहीं न करे मुंह कोन हलायो बाकी कोई बियो गानो तव्हांजी पसंद जो ॿुधी वठंदासीं और दिया कहती है सबर टॉपिक अच्छा टॉपिक का जवाब सबर देती है और कहती है नहीं नहीं इशू कोई नहीं है बस ऑफ कर दिए हैं आप ऐसे ही पैनल पर मैसेज किया करें दिया ठीक है जब जब आपको टाइम मिले और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनी बहुत ही अच्छा लगा और इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से इजाजत क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ चुका है वरी तहां से इंशाल्लाह मुलाकात थी पई मुझी 5 बजे वाले प्रोग्राम में सो बुधना भी सारी ना मांजो ओ हीरो सरो ख्याल रखना किथे का गलती थी हुजे तो माजरत कयूं था जिना फीडबैक रही थी वयां जिना गाना रही थी वयां सबनी का माजरत कयूं था सो मोकलानी ना है बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

0: जो ऐलान फरस्त में कमांडर अहमद वहीदी अलल अब्दुलहई अहमद रज़ा ऐं जा नाला शामिल अमेरिका सां जंग दौरान शहीद थियल सईद ऐं मजीद जा बि नाला शामिल ईरानी उहिदेदारनि ते अमेरिकी फ़ौजनि ऐं हंधनि ते हमलनि जो इल्ज़ाम
1: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीर हाकान फुगदान सां फोन ते राबतो ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं परडे॒ही खाते मौजूद ॿिन्ही अॻवाणनि रीजनल फोर्स जे ईंदड़ इजलास बाबति ख़्यालनि जी ॾेवट कई वई ॿिन्ही अॻवाणनि मौजूदा सूरतहाल ते राबतनि में रहण ते बि इतफ़ाक़ कयो
0: धरती माउ आहे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो समाजी वेबसाइट ते बयान बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंधीअ में लिखियलु जुमिलो बेनज़ीर भुट्टो जो तस्वीरुनि सां गॾु जारी कयो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: सियासी है फौज क्यादत से मुलाकात हुआ अपना हरकत खोला ईरान अमेरिका तक
1: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो ईरान जे सियासी है फौज क्यादत से मुलाकात हुआ अपना हरकत खोला ईरान अमेरिका तकरार के खाते के गौर गरु वजीर मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल जे ईरानी क्यादत से मुलाकातन के नतीजो ईंदड़ करार ॾेई छॾियो। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में मोहसिन नकवी चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो गौर अमेरिका ईरान तकरार ऐं विच ओवर में जारी छिकाण जे ख़ात्मे ते हो। इस्लामाबाद मुफ़ामती यादाश्त जे मुकमिल बहाली लाइ घुर्बल क़दम खणण ते गौर कयो वियो। ईरानी सदर मुलाक़ात दौरान हुकूमती मौक़िफ़ ऐं ख़र्चनि खां आगाह कयो। मुलाक़ात दौरान थियल अहम अगभराई मुस्तक़बिल में वधीक मुस्बत क़दमनि लाइ रस्तो खोलींदी ऐं किथे में जटादार अमुल जे क़याम लाइ मददगार साबित थींदी।
2: ईरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे के नतीजो ढींदड़ करार दई छो। मुलाकात जहां नतीजा भी जल्द सामू अचने की दावा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान है अमेरिका के गाल की बहाली लाए पांजो रवैयो तब्दील करो पव। धमकिन ए दबा से मसला हल थियण बदरा मुश्किल थी वा। वाशिंगटन के इस्लामाबाद में तय थियल मफामत अमल कर घुर्ज। अमेरिका के ईरान से मुसबित अगभराई लाए रवैयो तब्दील करो पव।

0: अमेरिका ईरान खिलाफ़ नई मुआशी पाबंदियुनि जो ऐलान करे छॾियो। ईरान सां माली राब्ता रखंदड़ मुल्कनि खे बि निशानो बणाइण जी धमकी। अमेरिकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त अमेरिका ईरान सां समूरा मुआशी राब्ता ख़तम करे छॾींदो। अमेरिकी दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त ईरान ते हमला बंदि नाहिनि कया, ज़रूरत पवण ते हथियार बंदि कार्रवाइयूं कयूं वेंदियूं। आबना हरमुज़ ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे। लंग मां तेल जी रफ़्त जारी आहे।
1: अमेरिका ईरान सां लाॻापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लॻाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजो हक़नि ऐं मफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ घुरबल क़दम खणंदो। चीन अमेरिका खे ख़बरदार करे छॾियो आहे। चीनी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त बीजिंग गैर क़ानूनी ऐं हिकु तरफ़नि पाबंदियुनि खे रद्द करे थो। चीन पंहिंजे मफ़ादनि जे दिफ़ा लाइ ज़रूरी क़दम खणंदो।
0: अमेरिका पासदारनि इंकलाब जो सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते $1 करोड़ ताईं इनाम जो ऐलान करे छॾियो। लिस्ट में कमांडर अब्दुल वहीद अब्दुल हई हमीद रज़ा जा नाला शामिल। अमेरिकीअ सां जंग दौरान शहीद थियल सईद आकाजानी ऐं मजीद खादनी जा नाला बि शामिल। ईरानी उहिदेदारनि ते अमेरिकी फ़ौजियुनि ऐं हंधनि ते हमलनि जो इल्ज़ाम।
1: नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो तुर्क जे परॾेही वज़ीर सां फोन ते राब्तो। बितरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जे सूरताल ते ॻाल्हियूं। परॾेही खाते मूजिबि ॿिन्ही अॻवाणनि रीजनल फोर जे ईंदड़ इजलास बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। ॿिन्ही अॻवाणनि मूजिबि मौजूदा सूरताल ते राब्तनि ते रहण बि इतफ़ाक़ कयो।
0: धरती माउ आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो समाजी वेबसाइट ते बयान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंधी में लिखियल जुमिलो बेनज़ीर भुट्टो जी तस्वीरनि सां गॾु शेयर कयो।
1: वज़ीर आज़म समेत कंहिं बि ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ आण अपोज़ीशन जो हक़ आहे। रोके नथो सघजे वक़्त अचण ते ॾिठो वेंदो। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर अया सादिक चयो आहे त कोरम पूरो करणु स्पीकर जो न पर हुकूमत ऐं अपोज़ीशन जी ज़िमेवारी आहे। अॼु इजलास में बहितरी आई आहे, सुभाणे वधीक ईंदी। क़ानून साज़ीअ बाबति अपोज़ीशन जो इताद थियणु सुठी ॻाल्हि आहे। कमेटीअ तां पीटीआई जो ॾिनल इस्तीफ़ाऊं क़बूल न आहिनि कयूं। ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई थकिजी पिया आहियूं। हाणे अपोज़ीशन खे अॻिते वधणो पवंदो।

0: सेनेट में पीटीआई बानी के इलाज बाबत अपोजिशन जो एतजाज मेंबर सीटन ते बी रहा बानी के इलाज लाए
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहिक वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर ए आचर से बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन ए औरतन में वजन जो न वधन उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो। राबते लए 03011 96 851।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120।
0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803847।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मुनीर जी दौरे के नतीजों ॾींदड़ करार ॾेई छॾियो, मुलाकातनि जा नतीजा बि जल्द साम्हूं अचण जी दावा। ईरानी सदर मसूद पशेकियान चयो आहे त अमरीका खे ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ पंहिंजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकियुनि ऐं दबाउ सां मसला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा। वॉशिंगटन खे इस्लामाबाद में तय थियल मफ़ामत ते अमल करणु घुर्जे। अमरीका खे ईरान सां मुस्बत अगभराईअ लाइ रवैयो तब्दील करणो पवंदो। अमरीका ईरान ख़िलाफ़ नयनि मुआशी पाबंदियुनि जो ऐलान करे छॾियो। ईरान सां माली राब्ता रखंदड़ मुल्कनि खे बि निशानो बणाइण जी धमकी। अमरीकी नाणे वारे वज़ीर स्कॉट बेसेंट चयो आहे त अमरीका ईरान सां समूरा मुआशी राब्ता ख़तम करे छॾींदो। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेगसेथ चयो त ईरान ते हमला बंदि नाहिनि कया, ज़रूरत पवण ते हथियार बंदि कयूं। आबनाए हुर्मस ते बि अमरीका जो कंट्रोल आहे। लंघ मां तेल जी रसद बि जारी आहे। अमरीका ईरान सां लाॻापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लॻाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजनि हक़नि ऐं मफ़ादनि जी तहफ़ुज़ लाइ घुरबल क़दम खणंदो। चीन अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। चीनी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त बीजिंग गैर क़ानूनी ऐं हिक तरफ़ियन पाबंदियुनि खे रद्द करे थो। चीन पंहिंजनि मफ़ादनि जी दिफ़ा लाइ ज़रूरी क़दम खणंदो। अमरीका पाकिस्तान इनकलाब जे सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते $1 करोड़ ताईं इनाम जो ऐलान करे छॾियो। फहिरिस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अली अब्दुल हई, हमीद रज़ा जा नाला शामिल। अमरीका सां जंग दौरान शहीद थियल सईद आखाजानी ऐं मजीद खादमीअ जा नाला बि शामिल। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर जी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी सां मुलाक़ात। खिते जी मजमूई सूरतहाल समेत ॿियनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। ॿेतरफ़नि लाॻापनि सहकार खे हथी ॾियण ते गौर वीचार कयो वियो। अमरीकी सफ़ीर खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ फील्ड मार्शल जी मुस्बत किरदार जी वाखाण कई।

माउ आहे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जो समाजी वेबसाइट ते बयान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंधीअ में लिखियल जुमिलो बेनज़ीर भुट्टो जी तस्वीर सां गॾु शेयर कयो।

0: पीटीआई बानीअ जी इलाज बाबति तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त ते एतिराज़ ख़तम थियण बाद सुप्रीम कोर्ट नंबर अलाट करे छॾियो। उज़्मा ख़ान पारां तोहीन अदालत वारी दरख़्वास्त जल्द ॿुधणीअ लाइ मुक़ररु करण बाबति बि दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। दरख़्वास्त हलंदड़ हफ़्ते ई ॿुधणीअ लाइ मुक़ररु करण जी इस्तदा। सेनेट में पीटीआई बानीअ जी इलाज बाबति अपोज़िशन जो सख़्त एहतजाज, मेंबर सीटनि ते बीही रहिया। बानीअ खे इलाज लाइ इस्पताल मुंतकिल करण जो मुतालबो। सिहत वारे वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त डॉक्टरनि पीटीआई बानीअ जो सीटी स्कैन कराइण लाइ चयो ई न आहे त किन थींदो। पिम्स इस्पताल में हिकु न पर ॿ मशीनूं ऑपरेशनल आहिनि, सबूत पेश करे सघूं था। राणा सनावला चयो त हाणे अवां पीटीआई बानीअ खे बीमार साबित करण ते छो ज़िद करे रहिया आहियो। अदालत न बणिजो, असां पंहिंजो उज़र अदालत में पेश कंदासीं। फैसलो अदालत खे ई करणो आहे। अलामा राजा नासिर अब्बास चयो त हिन मामले में हुकूमत वॾी दिल जो मुज़ाहिरो न कयो। यकीन था ॾेरायूं त हुकूमत किरण जो सबब न बणजंदासीं। ख़दशा ख़तम कयो। पीपुल्स पार्टी जी वफ़द जी क़ौमी असेंबली जे स्पीकर चैम्बर आमंद। वफ़ाक़ी वज़ीरनि सां बि मुलाक़ात। पीपुल्स पार्टी जी वफ़द में फारूक नाइक, शेरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ़ ऐं मुर्तज़ा वहाब शामिल। वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउल्ला ऐं कानून वारो वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ बि मौजूदु हुआ। पीपुल्स पार्टीअ जे ख़दशनि ते ग़ौर वीचार।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड महरापुर राबते जे लाइ 0320-1800-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
3: हाँ नहीं अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204372 आई 0242460100।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69।
3: अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बहाली लाइ पंहिंजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकियुनि ऐं दबाव सां मसला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा। वॉशिंगटन खे इस्लामाबाद में तय थियल मफ़ाहमत ते अमल करणु घुर्जे। अमरीका खे ईरान सां मुस्बत तक भराई लाइ रवैयो तब्दील करणो पवंदो। अमरीका ईरान ख़िलाफ़ नयनि मुआशी पाबंदियुनि जो ऐलान करे छॾियो। ईरान सां माली राब्ता रखंदड़ मुल्कनि खे बि निशानो बणाइण जी धमकी। अमरीकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त अमरीका ईरान सां समूरा मुआशी राब्ता ख़तम करे छॾींदो। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हैक सेत चयो त ईरान ते हमला बंदि न आहिनि कया, ज़रूरत पवण ते हथियार बंदि कार्रवायूं कयूं वेंदियूं। आबनाए हुर्मस ते अमरीका जो कंट्रोल आहे। लंघ मां तेल जी रसद बि जारी आहे। अमरीका ईरान सां लाॻापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लॻाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजनि हक़नि ऐं मफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ घुरबल क़दम खणंदो। चीन अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। चीनी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त बीजिंग गैर क़ानूनी ऐं हिक तरफ़ियन पाबंदियुनि खे रद्द करे थो। कतर बि ईरान ते अमरीकी मुआशी पाबंदियुनि खे हिक तरफ़ो क़रार ॾेई छॾियो। कतरी परॾेही तर्जुमान चयो त कतर तकरार जे हल लाइ सफ़ारती कोशिशुनि जी हिमायत कंदो रहंदो। अमरीका पासदारान इनकलाब जे सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते हिकु करोड़ डॉलर ताईं इनाम जो ऐलान करे छॾियो। फहिरिस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अली अब्दुल हई, हमीद रज़ा जा नाला शामिल। अमरीका सां जंग दौरान शहीद थियल सईद आखाजानी ऐं मजीद खादमीअ जा नाला बि शामिल। ईरानी उहिदेदारनि ते अमरीकी फ़ौजियुनि ऐं हंधनि ते हमलनि जो इल्ज़ाम आहे।

0: डॉक्टर हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर के सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आएं। असों के प्रोग्राम के लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। लाइव कॉल जो नंबर है 0301-9196-851। सब का पैर तो अस डॉक्टर साहब के पे प्रोग्राम में खुश आमदी चवंदी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहब की आयो तबीयत से ठीक है?
1: जी सी अल्लाह ताला जा करोड़ एहसान।
0: डॉक्टर साहब आज केड़े मौजू बाबत जे लिसनर्स के जान दिंदा सर?
1: औज़ बिल्लाहि मिन शैतान जी। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैरा त सब तारीफ़ों उन रब पाक जो जो असारे तो उगारा तो रोज़ी दिए तो खुशी दिए तो सभी ज़मीनी आसमानी आफत का महफूज रखे तो। असो प्रोग्राम सेहत की गाल बर वक्त टाइम नशर है। अवे खबर है तो असि क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक अवे शहर में रापुर में मौजूद होंगी है। एड्रेस अवे एसन भाई भी नोट कराइंदा आऊँ भी अवे नोट कराइंदा हलंदुस त वधण पोटा पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामू कोचड़ी रोड से। टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे का शाम जो 5 बजे तई डेज डी के हवाले से अवे सभी के दोस्त खबर है। अंगारो असि क्लिनिक जो है सो ऑफ होंगी क्लिनिक बंद होंगी है। बकाया बया जो सो हफ्ते जहाँ जी भी ढीन वो क्लिनिक मौजूद होंगे। इनमें स्पेशली हफ्ते जहाँ टे ढी जुमो छंछर आचर जै बिल्कुल जुमे जो ढी छंछर जो ढी आचर जो ढी चेकअप फीस फ्री होंगी है। बाकी दवा मरीज के वी होंगे अड़े तरीके से सो अवर है प्रोग्राम सेहत की गाल में मुख्तलिफ़ मौजूदातों जो सो अस गई मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवा से टिप्स के हवा से जेके भी रोज़मर्रा तुम ऐसो नंढी वड़ी बीमारियों उनके हवा से अवेयरनेस एंड प्रोग्राम जो मकसद भी यही होंगे है अवेयरनेस दियण। सो अवेयरनेस असे बुधंदड़ तीन जो सो पहुँचाई असा जो भी लिसनर्स हूँ उन्होंने बुधंदा तमाम जो है सो एक किस्म जो ये समझो तो मुस्तफ़ीद थींदा है। उन टिप्स वगैरह बुधाई उन्हें में भी मुस्तफ़ीद थींदा है। अड़े तरीके से असा वट खास करे जेके ज्यादा पेशेंट्स जिन दिन में इंदा है कोशिश कर तो असा उन बीमारी के महसूस कंदा तो वह बीमारी अजकल ज्यादा है तो उनके हाईलाइट करण जे लाए अवां ताई प्रोग्राम में उनन जी लाए जेको है सो वह छो बीमारी छो थींदी आए उनके बीमारी के कीअं रोके सकजे तो या उन बीमारी जे लाए कहड़े टिप्स इस्तेमाल कर सकजनस था। त ओ ये थींदो आहे जो बर वक्त माण्हू पेशेंट के जेकॾहिं या बीमारी थी वञे का भी बीमारी अहिड़ी त हू उन बीमारी खे सुञाणे सघे समुझे सघे ऐं फ़िलहालु उन पाण खे फस्ट एड ॾियारे सघे ऐं उन डॉक्टर ताईं पहुची सघे। छो जो अॼुकल्ह जेको आहे सो सेल्फ मेडिकेशन्स तमामु घणी थी वई आहे ऐं पेशेंट सेल्फ़ मेडिकेशन जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त पाण मुरादो मरीज़ जेको आहे सो वेंदो आहे स्टोर तां ऐं दवाई वठी ऐं इस्तेमालु कंदो आहे या स्टोर वारा पंहिंजी मर्ज़ी सां जेको आहे सो अॼुकल्ह त सुयूं बि जेको आहे सो हुननि खे हणी छॾनि था आहिनि। लेकिन अवांखे ख़बर आहे त इन्हनि जा एॾा वॾा साइड इफ़ेक्ट्स आहिनि जेकॾहिं पेशेंट मरीज़ जेके इस्तेमालु कनि था त उन्हनि सां वीचारनि सां मजबूरी बि हूंदी आहे जो ज़ाहिर आहे त जेको आहे सो पैसे जो मसइलो बि हूंदो आहे। उहो फ़िलहालु उहो चाहींदा आहिनि त जीअं सिंधीअ में चइबो त टिकी फोटे मां जान छुटी वञे त उहो त ठीकु आहे। लेकिन पोइ मर्ज़ु जेको महीने में ठीकु थियणो आहे उहो पोइ सालनि में बि ठीकु न थींदो आहे या मर्ज़ु जेको आहे ई कोन उहो मर्ज़ जी सूरत अख़्तियार करे वेंदो आहे। सो इन जे करे मां उन्हनि पंहिंजनि भाइरनि खे अमड़ियुनि खे भेनरुनि खे इहो मशवरो ॾींदुसि त सेल्फ़ मेडिकेशन पाण मुरादो हरूभरू कंहिंखे बि जेको आहे सो यानी दवा न वठो या ईअं जेको आहे सो सवाइ कंहिं सुठे डॉक्टर जे कंहिंखे बि हरगिज़ न ॾेखारियो। छो जो अॼुकल्ह दवाउनि जा खोड़ सारा साइड इफ़ेक्ट्स थी पिया आहिनि जेके उहे गुर्दनि ते जहिड़े खे दिमाग़ खे नज़र ते असरु कनि था। अचूं था पंहिंजे मौज़ूअ जी तरफ़ त बीमारियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कई त स्पोंडिसाइटिस हिकिड़ो मर्ज़ु आहे जेको हिते इंग्लिश जो मेडिकेटेड नेम आहे, लेकिन सवली सिंधी में असां ॿुधायूं त गर्दन जो सूर, सर्वाइकल स्पोंडिसाइटिस असां चवंदा आहियूं। ऐं इहो ई उहो दर्द आहे, ही उहा बीमारी, ही उहो सूरु आहे जेको ख़ासि करे घणो टाइम, घणो वक़्तु, यानी घणे भाङे ईअं चऊं त औरतुनि में जेको आहे इहा तकलीफ़ ज़्यादा थींदी आहे। मर्दनि में बि रेशो हिन जो आहे, लेकिन औरतुनि में ज़्यादा जेको आहे सो हिनखे बीमारी खे ॾिठो वियो आहे। ऐं उहा छो थींदी आहे औरतुनि में ऐं या मर्दनि में छो थींदी आहे, उन जा खोड़ सारा रीज़न्स आहिनि। सो रीज़न्स यानी असबाब खोड़ सारा आहिनि, ऐं उनमें कहिड़ा असबाब आहिनि या जेको आहे सो थी वञे त छा करणु घुरिजे। हिकु त ॾिसो, जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त हर घर में जेको आहे सो हर इहा बीमारी आहे अॼुकल्ह इन जे हवाले सां चवां थो। ॾिसो, ऑफिस वर्क में घणो वक़्तु दोस्त जेको आहे सो कंप्यूटर ते कंधु झुकाए वेंदा आहिनि, या ऑफिसनि में ई लिख पढ़ जो कमु थींदो आहे, उन में बि जेको आहे सो कंधु माण्हू झुकाए वेहे थो ख़ासि करे। ऐं ॿियो जेको न्यू जनरेशन आहे अॼुकल्ह मोबाइल ते घणो हुनजो ध्यानु आहे, ऐं मोबाइल ते बि जेको आहे सो कंधु झुकाए जेको आहे सो ख़ासि करे अॼुकल्ह त हर उमिरि वारो, चाहे जेको आहे सो वॾो हुजे नंढो हुजे, उहो जेको आहे सो ख़ासि करे जेको ॿारड़ा आहिनि, औरतूं आहिनि, इहे कंधु घणो झुकाए ऐं घणो टाइम जेको माण्हू वेहे थो त उनखे इहा तकलीफ़ ज़्यादा थिए थी। अहिड़े तरीक़े सां अव्हांजे घर में ॾिसो कंहिंखे विहाणा हूंदा आहिनि, लेकिन कंहिंजो नरम विहाणो हूंदो आहे, कंहिंजो सख़्तु विहाणो हूंदो आहे, उनजे अनबैलेंस जे करे बि जेको आहे सो सही जेको आहे सो विहाणे न हुजण जे करे बि जेको आहे सो दॿा पइजी वेंदो आहे कंधे ते, ऐं पोइ उनजे करे जेको आहे सो उहा तकलीफ़ वधी वेंदी आहे। या जेको आहे सो कंहिंखे मिसाल को दवाउनि जा पुराणा साइड इफेक्ट्स हूंदा आहिनि, या किथे ॾिसो मोटरसाइकिल ते माण्हू वञे थो, रस्तो ख़राबु आहे, को अहिड़ो झटको अची वियो जंहिंसां जेको आहे सो कंधु खे झटका अची विया, त उनजे करे बि थींदो आहे। ॿियो घणो भाङे ईअं बि थींदो आहे, तव्हां ॾिसो ॾिठो हूंदो त ऑफिस वर्क में या ॿिए हंधि घणा जेको आहे सो ईअं जेको आहे सो ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे या लिखंदे लिखंदे या पढ़ंदे पढ़ंदे उन्हनि खे निंड अची वेंदी आहे, ओचितो वरी जेको आहे सो उन्हनि खे झटको अची वेंदो आहे, त उन झटके में बि जेको आहे सो इहा तकलीफ़ थी वेंदी आहे। हाणे इहा तकलीफ़ थिए छो थी जो हिकिड़ो यानी जेके असांजे जेको कंधो आहे उन जो तालुक़ु सिधो सो इहे जेको असांजो स्पाइनल कार्ड आहे उन सां आहे, उन में जेको आहे सो सम्झो त हिकिड़ी कुदरत जो हिकिड़ो सिस्टम ठहियलु आहे। हिकिड़ो हॾियूं हूंदियूं आहिनि, सत हॾियूं हूंदियूं आहिनि जेके हॾियुनि ऐं रगुनि जे जेकी इन्हनि हॾियुनि जे विच में रगूं हूंदियूं आहिनि, ऐं उहे पोइ जेको आहे सो पंहिंजो मूव कंदियूं आहिनि, लेकिन किन सभु

कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफ़ो बीहर अव सभी बुधंदड़ के खुश आमदीद चवंदा। प्रोग्राम आए सहजी गाल डॉक्टर मुख्तलिफ़ बीमार बाबत इलाज कंदा आहिनि, जिन में गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक कन गलो, पुराणो नज़लो, निछूं मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु ऐं नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु घटि ॿुधण में अचणु, शुगर ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीवी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर हेपेटाइटिस बी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, औरतनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वञे थो। लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851, न त तव्हां कॉल करे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था। हिकु दफ़ो ॿीहर डॉक्टर साहिब जो एड्रेस तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे ॿुधाईंदासीं 0301-219-6851।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: सियासी ऐं फ़ौजी क़यादत सां मुलाक़ातूं, आबनाह हुरमस खोलण ऐं ईरान अमरीका तकरार जे ख़ात्मे ते ग़ौर वीचार। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी फील्ड मार्शल जे ईरानी क़यादत सां मुलाक़ातनि खे नतीजो ॾींदड़ करार ॾेई छॾियो। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में मोहसिन नक़वी चयो त ॻाल्हियुनि जो महिवर अमरीका ईरान तकरार ऐं विच ओभर में जारी छिकताणनि जे ख़ात्मे ते हो। इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश नामे जी मुकमल बहाली लाइ घुरबल क़दम खणण ते ग़ौर कयो वियो। ईरानी सदर मुलाक़ात दौरान हुकूमती मौक़िफ़ ऐं ख़दशनि खां आगाह कयो। ऐं ईरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जे दौरे खे नतीजो ॾींदड़ करार ॾेई छॾियो। मुलाकातनि जा नतीजा बि जल्द साम्हूं अचण जी दावा। ईरानी सदर मसूद पशकियान जो चवणु हो त अमरीका खे ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ पंहिंजो रवियो तब्दील करणो पवंदो। धमकियुनि ऐं दॿाउ सां मसला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा। वॉशिंगटन खे इस्लामाबाद में तय थियल मफ़ाहमत ते अमल करणु घुरिजे। अमरीका खे ईरान सां मुस्बत अगबराई लाइ रवियो तब्दील करणो पवंदो।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: क्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आइन। हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो। राबते लए 03001-2196-851।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कदम लाइ रस्तो खोलींदी ऐं खिते में जटादार अमन जी क़याम लाइ मददगार साबित थींदी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जे दौरे सां अहम कामयाबियूं हासिल थियूं आहिनि। ईरानी हुकूमत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जे दौरे खे इंतिहाई मुस्बत करार ॾेई छॾियो। ईरानी सदर मसूद पशकियां जे आफ़ीस मां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त फील्ड मार्शल जे दौरे जा नतीजा जल्द साम्हूं अचणु शुरू थी वेंदा। ईरानी सदर चयो त अमरीका खे ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ पंहिंजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। ऐं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां आबनै हुर्मज़ मां बारूदी सुरंगू मुकमल तौर ते हटाइण जी दावा। बारूदी सुरंगू विछाईंदड़ ईरानी ॿेड़ियुनि खे निशानो बणाइण जी बि धमकी। डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान जो मुआशी ॾेवालो निकिरी चुको आहे। ईरानी हुकूमत फ़ौज जे वॾे हिसे खे पघार ॾियण जी बि क़ाबिल नाहे रही।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ॾे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: अर्जेंट ब्यूटी क्रीम हर किस्म के स्किन को दे फ्रेश ग्लो और गोरी रंगत।
0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हाँ दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
2: ये yeah!

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 तौकीर अहमद 0306-1623-793।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03005569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013808743।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: ईरानी सदर मुलाकात दौरान हुकूमती मौकिफ ए खदशन का आगाह कयो। मुलाकात दौरान थियल अहम अगभराई मुस्तकबिल में वधिक मस्बत कदमन लाए रस्तो खोलींदी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे दौरान अहम कामयाबियों हासिल थी। ईरानी हुकूमत फील्ड मार्शल के दौरे के इंतहाई मुस्बत करार दे छो। ईरानी सदर मसूद पशिकियान के ऑफिस में जारी कल बयान में चयो तो फील्ड मार्शल के दौरे जा नतीजा जल्द सामू अचण शुरू थी वा। ईरानी सदर मसूद पशिकियान अमेरिका के गालन की बहाली लाए रवैयो तब्दील करो पव।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां आमला हुर्मुज़ मां बारूदी सुरंगू मुकमल तौर ते हटाइण जी दावा। बारूदी सुरंगू विछाईंदड़ ईरानी बेड़ियुनि खे निशानो बणाइण जी भी धमकी ॾेई छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान जो मुआशी ॾेवालो निकिरी चुको आहे, ईरानी हुकूमत फ़ौज जे वॾे हिसे खे पघार ॾियण जी बि क़ाबिल नाहे रही।

0: अमरीका ईरान सां लागापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लॻाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजनि हक़नि ऐं मफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ घुरबल क़दम खणंदो। चीन अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। चीनी परॾेही वज़ार जे तर्जुमान चयो त बीजिंग गैरक़ानूनी ऐं हिकु तरफ़नि पाबंदियुनि खे रदि करे थो। क़तर बि ईरान ते अमरीकी मुआशी पाबंदियुनि खे हिकु तरफ़ो क़रार ॾेई छॾियो। क़तरी परॾेही तर्जुमान चयो त क़तर तकरार जे हल लाइ सफ़ारती कोशिशुनि जी हिमायत कंदो रहंदो। वज़ीर आज़म सां सऊदी पाक गॾियल बिज़नेस काउंसिल जे चेयरमैन जी मुलाक़ात। ॿिन्ही मुल्कनि में इक़्तिसादी सहकार ऐं सीड़पकारी खे हथे ॾियण जे इम्काननि ते ख़्यालु।
1: आपके बच्चों का हेल्थी फ्यूचर जुड़ा
0: सहकार लाइ बहितरीन वक़्तु आहे। शहज़ादा मंसूर जो ज़राअत बंदरगाहनि शाहराहनि ऐं हवाई अॾनि जे आउटसोर्सिंग में सीड़पकारीअ में दिलचस्पी जो इज़हार। रियल इस्टेट तवानाई बिजलीअ जी विर्छ ऐं आई टी जे शोबनि में सीड़पकारी जे मौक़नि ते बि दिलचस्पी ज़ाहिर। अमरीकी सफ़ी नेटली बेकर जी घरू वज़ीर मोहसन नकवी सां मुलाक़ात। खिते जी मजमूई सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। बेतरफ़नि लाॻापनि सहकार खे बहितरी ॾियण ते गौर कयो वियो। अमरीकी सफ़ीर खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ फील्ड मार्शल जे मुस्बत किरदार जी वाखाण कई। बेएतमादी रिथ आणणु अपोज़िशन जो हक़ आहे, रोके नथो सघिजे, वक़्तु अचण ते ॾिठो वेंदो। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक चयो त क़ानून साज़ी बाबति अपोज़िशन जो इतिहाद थियणु सुठी ॻाल्हि आहे। ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई थकिजी पिया आहियूं, हाणे अपोज़िशन अॻिते वधंदी त असां बि वेंदासीं। पीटीआई बानी सां भेण नूरीन न्याज़ी जी अडाला जेल में मुलाक़ात। मुलाक़ात बाद नूरीन न्याज़ी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि करणु बिना रवानी। सुप्रीम कोर्ट बि बानी जे इलाज बाबति तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त ते नंबर अलाट करे छॾियो। दरख़्वास्त जल्द ॿुधणीअ लाइ मुक़ररु करण वारी बि दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GAFM 94।